कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभु की निगनीत। ए गोड़े को आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार, प्रभु की दृष्ट महा सुख होए हरस पावे बिरला कोए। जिन चाखिया से जन देवताने पूर्ण पुरख नहीं डोला, ने सो भर भरे प्रेम रस रंग उपजा चाओ साध कै संग। परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगास अंदन लिवलाग, बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए। सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल सेव कीनू सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया, इस पुन्नी श्रद्धा सा पूरी रव रहा सत्संग हजूरी। जिसका साधन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए।

0: अपने
1: तुम ही जानी नानक दास। बोलना जी वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय।

सोहिला राग घोड़ी दीप की मल्ला पलाय को अंकार सतगुर प्रसाद जय कर किरत आखे करते का हुए विचारु तित कर गाव हो सोहिला सिवरो सृजन हारो तुम गाव हो मेरी निरपाव का सोहिला हो वारी जिस सोहिले स्था सुख हो रहाओ नित नित जेड़े समालियन देखेगा दिवन हार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सजना सी सड़या जो होवे साहिब सो मेल कर करे हो पाहुचा सदने नित पवन सदन हारा सिमरिए नानक से दयावन रागा सा मोहला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश गुर गुरे को वे स्नेक बाबा जे कर करते किरत होए सो करा कुटाई तोय रहाओ विश्व ए चसिया घड़िया पैरा थी।

जनक मोती धूप मला लो पवन चवरो करे सकल पंदराए फूल अंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खन्ना तेरी आरती अनहता सबदवा जंत पेरी रहाओ सह स्तव नह नह तो को सह मूर्त न एक तो ही। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मैं चानन होए गुर साखी जोत प्रकट होए जोत पावे सो आरती होए। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अंदनो मोहे आही प्यासा कृपा जल दे नानक सारिं कोहि जाते।